ही सुख मंडाहे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो हो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाड़ चलो हरलाहा आगे बसनु सुहेला औत घटै दिन सुरे नारे मन गुर मिलका सुवारी रहाओ यहो संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पे आवै यहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मन ही बसेरा निज घर महल पाओ सुख सहजे बौर न होए गो फेरा।

मुख जम नसै। प्रभ कह सिमरन काल पर हरे, प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ सिमरत कछ बिघन लागै, प्रभ कह सिमरन अण दिन जागै। प्रभ कह सिमरन पहो ना बे आपै, प्रभ कह सिमरन दुख ना संतापै।

गिराने प्रभु कौ सिमरे से सुखवासी प्रभु कौ सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रुआला प्रभु कौ सिमरह से पार पकारी प्रभु कौ सिमरह दिन साध सद बलिहारी प्रभु कौ सिमरह से मुख सुहावे प्रभु कौ सिमरह दिन सुख बिहावे

दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसे, संत प्रताप दुर्त सब नसे, संत का संग विभागी पाइये, संत की सेवा नाम त्याइये, नाम तुल कछ वरन होए, नानक गुरुमुख नाम पावे जन को श्लोक। बहु सात्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल, पूरस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ साह, त्रि सिमृत वख्याण, जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बो जतना पुन दान, हो मैं बो रतना शरीर कटाए, हो मैं कर राती वर्तने करे बो पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नाव खान पृथ्वी फिर चेरे जीवे, महादास पीसर थी वे, अग्न माहे होत प्राण, कनक अस है भूम दान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजमत साधन,

धर उपर सुख बसहै सुत प्रात मीत बनता संग हसहै जिह प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव के मुला जिह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्यांग अवर संग रचना से दुख मूड़ व्यापे नान काढ़ ले हो प्रभ आपे।

सह साधक संग बसे थान उचे साधु कै संग मेहर पहुचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब को

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हम त्याग ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नान ब्रह्म ज्ञानी कर विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह

प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने,

ब्रह्म ज्ञानी भुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात, ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार, ब्रह्म ज्ञानी आवरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक,

परस सगल तारे अस्त परि मिथ्या नाही रसना परस मान मह प्रीत निरंजन दर्श पार त्रय रूप ना पेख नेत्र साध की टैल संसंग।

प्रकार स्मृति कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पतिथवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते।

प्रभ सोए कई कोट पार प्रभ के दास दिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार हे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे स्लोक करन कारण प्रभे कह दूसर नाही कोय नान तिस बिलहार ने जल थल महियल सोए अष्टपदी

लह न पाए। सब कहते काहु करने जोग, तिस मिन दूसरे हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करने।

चरण कमल हृदय में उर तारहु करण कारण सुप्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो नाम हरवाथ इहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राख मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कौ चार कुंड उठता विसो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख काउ नित बाछी मीत सो सुख साधु संग प्रीत

ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेय चूत विस्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मध सगल

धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घटिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेहर केते

है, अजीत है, अभीत है, त्रिमान है, निधान है, दरबर गया, सर्ग है, नील है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, अर्भीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लम्ब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, पीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वौणे अनंगी नाथ इंद्र संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो थान ताने नमो निरथ निरते नमो नाद नाथे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी रामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक मनाले कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वं परम रूपे नमो राजोग जोगेश्वं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखीय परमीय भोगीय भोगते नमो जोग जोगेश्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अभ्रे देव सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह नमो पुपे नमो दान दाने नमो मान भाने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृहदकर्ता अदो अर्धं अगं ऊघहर्ता परंग परंग परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदीय भेदीय नामं अकामं समस्तो पराजी समस्तत्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है अजू है देश है भेस है भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे नंदी सुरभे नमो सर्वमान्य समस्ति निधाने नमास्त्वं नरनाथे नमास्त्वं परमाते नमास्त्वं गंजे नमास्त्वं पंजे नमास्त्वं काले नमास्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्वजी नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो ब्रह्मतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वगृसं नमो सर्वरंगे दर्भंगी अरंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिज्य बीजे समस्तं प्रसिज्य कृपालं स्वरूप स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदास हृदय सिद्धंग निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत गर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अजल भोगे चल राजे अटल साजे अखल सर्वंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग प्राणंग सर्व भुगता सर्वंग जोगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आदुर्बन आदमूर्त अजोन पुरख अपार सर्मान धर्मान देव अभेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकार जतर दतर विराज ही अवधूतर प्रसाद नाम ठाम ना जात जा करूप रंग ना रेख आद पुरखुदार मूर्त अजोन आद अशेख देश सूर ना भेष जा करूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विशा हो फैलो अनुराग नाम गाम विहीन पेख तामुन है जाय सर्वान सर्वतर मान सदैव मान

अलेख है, पेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनत है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग तराणं, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग धर्मंग, सर्वंग जोगता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरगनासे सदैवंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे दरबाद विभूते अनंगी नामे दृभंगी दृगामे दृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न भात न जात न पात नरसाकं श्री कै मिथो मी कै सदैवंग प्रभा है अजा है अजा है भगवती शांद त्व प्रसाद के जाहर जहूरें के हाजर हजूरें मैसुल सलामे समसुल कलामे के साहिब दिमाग है कृष्ण चरा के कामल करीमे के राज कर हिमे के रोजी दहद के राज कर हिंद करीमल कमाल के सुनल जमान है गरीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीबल शिकन है रासुल फिकन है कलंक प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गरीम है रजाय कर हिमे समस्तुल जबा है के साहिब ग्रह है के नरकम प्रनाश है बहसुल निवास है के सरबुल गमन है महसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अदीस है तमामुल तमीज है समसुल अजीज है परम परमीस है समसुल अदीस है अल्ले हमें अदेसुल लेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जबा है अमीकुल इमा है करीमुल कुमार के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह है के आत्म प्रवाह है के चलंग अनंग है के मित्तो अभंग है।

सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवगन को सेवगुन सुख दियो सतरन को बल मोह बद कियो कट कट के अंदर की जानत भरे बुरे की वीर विशानत।

सगरी सृष्टि दिखाए अचंबव्या जुगा स्वरूप अभ्रच्छाभेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठ बात तो पाता सकल मलेश करो रण घाता जे आस तो जिताब शरणी भरे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न ऐह रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट चरे तत्काला कृपा दुष्टन जाहे ने हर हो ताके ताब तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब हो दुष्ट शावाय सके न कोई

बिनस जाएंगे सगल निरारे। आकाश गगन गरीब वनवास सचे पातशाह जी कहिंदे सारे बिनस जाने ने इत्थे बस नहीं जे दिन स रैन दिन स रैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत बिनसेंगे बेदा। साहब जी कहिंदे जे दिन रात नहीं रहा शास्त्र नहीं रहे ते तेरे सुख कित्थे रहने ने, जे दिन रात रहेगा तां सुख रहने ना। इस करके गरीब निवास जी अज कृपा करदे ने बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नवखंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण। भी जे सतगुरु जी का नाम विसर गया है ना, साहब जी कहिंदे उद्यान बिया बाण जंगलां विच ही फिरदा है, उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी सुवाण सियाल खर है। उद्यान बसन ये जंगल है। ये किसी ने सवाल किया जी जंगल विच तां जानवर हुंदे ने, साहब जी कहिंदे इत्थे भी जानवर तुरे फिरदे जे। उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी सुवाण कुत्ता सियाल गिदड़ खर है गदा, जेड़े लोभी ने कुकर वर्गे ने, जेड़े डरपोक ने गदड़ा वर्गे ने, जेड़े ऐबड़ जिद्दी ने गदिया वर्गे ने। सीधे जे बोलने अर्थ कोई ऐसी गल नहीं है। प्रोफेसर साहब सिंह जी का टीका तुसी पढ़ के वेख लो, बहुते गुरमुख सिख वो टीके नू पढ़दे ने। मेरे गरीब निवास सचे पातशाह जी कृपा करदे ने, इस करके तू इत्थे गुरु चरणा च आके बेनती करिया कर गरीब निवास, ना मैनू स्वर्ग की लोड़ जे ते ना मैनू नरकां दा कोई डर पै रह गया। जिहदी सुरत टिक गई है वह नरकां दा कदे डर नहीं जे मनदा ते स्वर्ग जाण दी कदे इच्छा तांग नहीं रखदा। गुरु की अमृत बाणी दे अमृत बचन ने क्या नरक की है नरकां दीआं गल्लां करदे हो, क्या स्वर्ग विचारा ते की विचारे स्वर्ग दीआं गल्लां बातां पाउंदे रहिंदे हो। संतन दो इरादे जिहड़े रब दे प्यारे दोनां नूं पासे कर दिंदे ने, वो कहिंदे ठहरने वाले ठहर जाओ हम तो सफर करते हैं, मेरी मंजिल स्वर्ग नहीं है, मेरी मंजिल नानक दा रूप होना है, मेरी मंजिल जिहड़ी है कलगियां वाले दा रूप होना है, उहदा सरूप बन जाना है, मंजिल वो है। खंडे बाटे दी पौ लई है, गुरु ने रूप दिता है, जे रूप दे दिता है उस रूप नूं सांभ के रखना है, किते रूप गवाच ना जावे मेरे साहिबां दा। गरीब निवास सचे पातशाह जी कहिंदे क्या नरक क्या सुरग बिचारा, संतन दो रादे हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे, अब तो जाए चढ़े सिंघासन। सिंह आसन जिहड़ा डोलन वाला नहीं है, अब तो हुण तां अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिलहै सारंग पानी राम कबीरा एक पए है कोए ना सकै पछानी, संता मानो दूता डानो एह कुटवारी मेरी दिवस रैण तेरे पाओ पलोसो, केस चवर कर फेरी हम कूकर तेरे दरबार, पौके आगे बदन पसार पूर्व जन हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई हुण मिटिया नहीं जांदा, पहला भी तेरे सा हुण भी तेरे आ, जिथे दाता रखे उथे स्वर्ग वर्गा ही माहौल बन जावे, ए बख्शिश कर दियो सतगुरु जी। कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो, सतगुर कै प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो अंत आर आद, सदा पातशाह आद अंत विच आप जी दे चरणा च निवासा हो जावे। गरीब निवास जी दे अमृत बचन ने सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे गृह सोयन, चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मान दा किश नाहे वसूरे। वाहिगुरु वाहिगुरु।

न फल पही सब सेवा। ये विस्तरे नहीं तेरे को गाई नहीं है साहब जी, कहिंदे इहदे विच पामर होया झल्ला होया फिरदा चल तका टेढ़े टेढ़े टेढ़े आसत चरम बिसटा के मुंदे दुर्गंध ही के बेडे राम ना जपो कवन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर इहो तन राखो रहे अवस्था पूरे। नेका जतन कर ली रहा नहीं जाना चेता रख सिर लगा जम डंड डंडा कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओह नहीं सहया जाए जम का डंड मूंड मह लागे खिन मह करे नवेरा। ता उदो ता पहला नहीं ना कीता जो डंडा लगा मार पई ता पछतानिया कहिंदा जप लैंदा सतनाम श्री वाहिगुरु हुण जपिया नहीं जाणा समा ता गुजर गया है। गुजर किवें गया रात भी गवाली जे ते दिन भी गवाच गया जे रहण गवाई सोए कै दिवस गवाया खायो लंघ गया है। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आवो केरे कम बस दुनिया दे औगणा नू वेखदा रहा कदे अपनी औगण ता वेखे ही नहीं है। किसे वाले एक उंगल करन वालिया तीन उंगला सिद्धियां तेरी छाती वाले आ रही आई। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लेख ना लेके वेख्या कर आप नड़े गिरीवाड़ में सिर नीवा कर देख तेन पछता ताप ना करना पैजे पाप पछतानिया नहीं ते पछता ताप करना पवेगा। बिन पूरे गुरदेवा पूरिया गुरा तो बिना गुरदेव तो बिना गुरु तो बिना फरै सैतानिया फिर पातशाह जी कहिंदे शैतान बन के तुरिया है शैतान चंचल ताइया विच शैतान किनू कहिंदे तुहानू पता है मेरे कहण दी जरूरत नहीं है। साहब जी कहिंदे चंचल ताइया शैतानिया चलाकियां विच फिरदा कहिंदा वेखिया ना मेरी चलाकी नाल आ कुछ हो गया ते जिदन पुठा पै गया उदन चलाकियां किथे जाणियां ने सब खत्म हो जांदियां ने। गुरु दी रहमत मंगिया कर गुरु दी बख्शिश मंगिया कर गुरु चरणा च जोदड़ी करिया कर गरीब निवाज मेरे हिरदे विच नाम दा कणका दे दिओ शब्द दे दिओ जिहदे करके जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जाण। अज दे अमृत बचना विच गरीब निवाज जी ने अपार कृपा कीती जे वैरागमई पावन उपदेश बख्शिश कीता है स्वर्ग वर्गे सुख ने राज भाग तेरे कोल ने राज चाहिदा है। मैं पिछले दिनां अंदर बेनती कीती सी राज वास्ते ते साडी जद्दोजहद चल रही है राज वास्ते ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालिया ने धर्म युद्ध मोर्चा लाया है। उसे राज की गल तां संत बाबा जरनैल सिंह ने कर दिती सी जिदन सचखंड हरिमंदर साहिब अकाल तख्त ते हिंद सरकार ने अटैक कर दिता नींह रखी जानी है। वो जे नींह रखी है महापुरशां ने ते महल तुसाने उसारने ने पर राज ओ है कुत्तियां दे गलां विच पाया होया कैंठा नहीं लाया जांदा सी बजुर्ग बाबियां दे दाने चक के उन्हां दे घरां पहुंचाए जांदे सन। ओ राज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी गल करदे हो गुरु सवारी संगत जी ओ राज चाहीदा है धर्मात्मा राज चाहीदा है। इस करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ओ राज नहीं है जिहदे विच रब भुल जावे नाम भुल जावे सुख लैंदिया होया साहब जी कहिंदे नरक बन जांदे ने नरक। ये अज दे अमृत बचन बख्शे ने आओ शब्द नाल जुड़ जाइए केवल एक मिनट का समा जे सारे माई भाई घर जड़े अमृत बाणी की कथा सुनते हैं जां लंगरां दे विच कमा रहे सेवा ने जां दरबार विच बैठे हुए प्यारे गुरसिख ने

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आए, नानक के प्रसाद, सदल द्वार को छाड़ गहो तुहारु द्वार, बाहेंग है की लाजिया गोविंदास तुम्हार, तिन्ने ताप नुवारन दुखंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभु आगे अरदास। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बने आए, परगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की बड़े, गुरु नानक की बड़े आए। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जा तो नाही, मैनु जोग कितो, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियो, तरस पया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिले, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे। छोट महला पंजवा,

0: हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तुम ऐसा माधो हम ऐसे तुम ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहाओ तुम सब साजे
1: साजने वाजे जियो पिंड दे प्राण तुम सब साजे साजने वाजे जियो पिंड दे प्राण
0: निर्गुण यारे
1: गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरवाना निर्गुण यारे गुण नहीं कोई
0: तुम दान देहो मेहरवान तुम करो भला
1: हम पलो न जान
0: तुम
1: सदा सदा दयाल
0: तुम
1: करो भला हम पलो न जान
0: तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते
1: तुम राखो अपने वाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने वाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे
0: तुम दान अटल सुल्तान
1: जी जंत सब जाचे कौन नानक हमें है हवाला राख संतन के पाछे कौन नानक हमें है हवाला राख संतन के पाछे
0: गौड़ी महला पंच थिर कर बै

0: कदे न छोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती घोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती घोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े
1: नानक
0: मंतन चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े
1: नानक
0: मंतन चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्राप बेन अपनी भगती ला धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की प्राप बेन अपनी भगती ला धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कोट कोट पढ़ना भुल चुक माफ तेरे चरण कमला वास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कल तेरे भाणे स्वागत वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतह
1: जो बोले सो निहा सत श्री अकाल बहुत बहुत

हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहो न हो भी भंग। मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेशिया, हर भेटिया राओ निसंग। राओ मुंद आनी मनमुखी, फिर आवन जावा जाना अंग। हर प्रभ चित ना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। आम मैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग। गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किल विख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मिलो संग। मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मिलो संग। मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। वाहिगुरु जी का खालसा।

साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है रहाउ। आपे मारे आपे छोड़, आपे लेवा दे, आपे वेख आपे बिकसै, आपे नदर करे। जो किछ करना सो कर रहया, अवर न करना जाई। जैसा बरता तैसो कहिए, सब तेरी वड्याई। कलकुल वाली माया मद मीठा, मन मत वाला पीब तरह। आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपड़ा एव कह। आसा महला पहला, वाजा मत फकाव जपाओ, होए आनंद सदा मन चाहो। एहा भगत एहो तपताओ, इतरंग नच हो रख रख पाओ। पूरे ताल जाने सालाह, होर नचना खुशियां मन माह रहाओ। सत संतोख बजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। राग नाद नहीं दूजा पाओ, इतरंग नाच हो रख रख पाओ। पाओ फेरी हो वै मन चीत, बहंदिया उठदिया नीता नीत। लेटन लेट जाने तन स्वाह, इतरंग नाच हो रख रख पाओ। सिख सवा दीखिया का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखण वेरा वेर, इतरंग नाच हो रख रख पैर। यासा महला पहला, पौन उपाय धरी सब धरती। जगल जल अग्नि का बंद किया, अंधलै दह सर मूंड मंडाया। रावण मार क्या बड़ा भया, क्या उपमा तेरी आखी जाए। तू सर्वे पूर रहया लिबलाहे रहाओ। जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या बड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रब रहे। नाल कटम साथ बरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका, कांसो छेद क्या बड़ा भया। रतन उपाए धरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया। कह नानक छपै क्यों छपया, एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी। राम नाम फल हुआ, तिस रूप नरेख अनाहद वाजै। शब्द निरंजन किया, करे बखियान जाने जे कोई। अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त भय है। टूटे बंधन पाहे, ज्योति ज्योत समाणी भीतर। ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखया। सगल भवन तेरी माया, रारा रूप नरालम बैठा। नदर करे बिच छाया, बीना शब्द बजावै जोगी। दर्शन रूप अपारा, शब्द अनाहद सो सहुराता। नानक कह बिचारा, आसा महला पहला। मैं गुण गल्लां के सिर भार, गली गल्लां सिरजनहार। खाना पीना हसना बाद, जब लग रिदन आव हजाद। तौ परवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किछ लीजी लीजै। रहाओ मन की मत मता गल मता, जो किछ बोलिए सब खतो खता। क्या मोह लै कीजै अरदास, पाप पुन द्वे साखी पास। जैसा